ॾाकनि वारे इलाइक़े में दाख़िल थियण जी कोशिश कंदा रहिया। भारतीय सामूंडी जहाज़ पाकिस्तान जे सामूंडी हदनि में चिड़ ॾियारींदड़ ऐं गैर ज़िमेवारानी हरकतूं कयूं। 15 सितंबर ते INS कोलकाता ख़तरनाक अंदाज़ में रुख तब्दील करे PNS हुनेन सां टकराइजी वियो। PNS हुनेन पारां बचाव जी कोशिश बावजूद भारतीय जहाज़ सां रगड़जण जो वाकियो पेश आयो। वाकिए खां पोइ INS कोलकाता रफ़्तार वधाई ऐं इलाइक़े मां भॼी वियो। पाक वेरिया जे पेशावराणे ज़िमेवारनि तर्ज़ अमल सूरतयाल खे वधीक बिगड़जण खां रोकियो।

मका मुआदे में शामिल कें भी मुल्क हमलो थो तो टे मुल्क गडी फैसलो कंदा। मके मुआदो जारहणो न पर दिफाई नोयत जो आहे। दिफाई वायदन जा ऑपरेशनल तफसील अवामी सतह ते नाहिन बुधाया वेंदा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो अरब टीवी के डिनल इंटरव्यू। DGISPR चयो आहे ते कें भी मुल्क खिलाफ असांजा इरादा जारहणा नाहिन। दिफाई सलाहियतन ते भरोसो आहे। दिफा करण सां गॾु सजा ॾियण जी भी सघ रखूं था। अफगानिस्तान बाबति मौक़िफ़ वाज़े आहे। अफगान सरज़मीन पाकिस्तान खिलाफ़ इस्तेमाल न थियण घुर्जे। भारत पंहिंजी फ़ौजी ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो। पाकिस्तान जे दिफ़ाई सलाहियतनि जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे। मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ़ करण जोगी नाहे। हरम जे तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हुसैन जे हमले ते सख़्त रदे अमल। वज़ीर आज़म चीन ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश कंहिं बि सूरत में माफ़ी जोगी नाहे। असांजो ख़ितो तकरारनि जी घरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। धुरियूं सबर जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक छिकताण खां पासो कनि।

बचाव वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चो है मके मुआहदो नबे हुए तो मुकदस हंधन की हिफाजत असो फर्ज है मके दिफाए मुआहदो असा लागू थिए तो पैंजो फर्ज अदा कंदी मके मुकरम से हमलो थो तो उनकी हिफाजत लाए मुआहदे की जरूरत ना है। ख्वाजा आसिफ बयान में चो तो तफसील में नो वे सके पर मके मुआहदे से अमल जहा पाबंद आन खिते के पैं दिफा पान करणो है तो इतने नवा एतिहाद भी ठांदा खेस नो लगे ईरान रियासत तौर खिते में को नओ मुआज खोलो।

यमन जे होसिन मके मुकरम जे हवाई हदनि में ड्रोन माणे रेड लाइन क्रॉस करे छॾी। सऊदी पारां ड्रोन खे हवा में ई तबाह करण जी दावा। सऊदी फौजी इतिहाद जो चवण आहे त यमनी होसिन जे ड्रोन खे मके जे फिज़ाई हदनि में दाख़िल थियण खां अॻु तबाह कयो वियो। मुक़दस हंध असांजी रेड लाइन आहे। होसिन खे इन हरकत जो इंतिहाई सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। होसिन पारां मके ते ड्रोन हमले वारे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। सूबे मार्च जे हवाई हदनि में सऊदीअ जो F-15 जहाज तबाह करण जी बि दावा। हुसैन अमेरिकी ऐं इसराइली जहाज़नि ते हमला न करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। परॾे ख़बरू इदारे रॉयटर्स मूजिब गुज़िरियल हफ़्ते ओमान जे राजधानी मस्कत में हुसैन ऐं अमेरिकी इख़्तियारनि विच में ॻुझी मुलाक़ात थी, जंहिं में हुसैन चयो हो त अमेरिका ऐं इसराइली बहरी जहाज़नि ते हमले जो को बि इरादो नथा रखनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वजीर अब्बास सिराकची हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर विच में फोन ते राबतो खिते जी सूरत हाल ते गालियों कई हुई ईरानी मीडिया मौजूद गुजरियल नी राबते दौरान ईरानी परे वजीर अब्बास सिराकची चीन में मौजूद हो अब्बास सिराकची चयो त ईरान अवाम जे हकन ए मुफादन जी जमानत डींदड़ सफारती हल जी आजियां करे थो अमेरिकी सदर ईरान जंग जल्द खत्म करण जी उम्मीद जाहिर करे छी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आए तो ईरान खिलाफ जंग पुजाणी ते आए रॉयटर्स मूजिब ट्रंप के बयान के उक्तड़ जंग वधीक पखेड़जण जो खदशो वधी वयो आए अमेरिकी मीडिया दावा कई ते अंगारे गडियल कौमन जी जनरल असेंबली के इजलास में ट्रंप के नार वारन मुल्कन सां मुलाकात जो इम्कान आए वजीर आजम शहबाज शरीफ की सारत हेठ दानिश यूनिवर्सिटी बाबत इजलास दानिश यूनिवर्सिटी के कयाम लाय वजीर आजम की हिदायत से डिनल अगभराई बाबत ब्रीफिंग डिनी वही वजीर आजम चयो तो होशियार मुस्तहक शागिर्दन के मेरिट ते मयारी ए जदीद तालीम की फराहमी तरजीह है पाकिस्तान जो भारतीय सामुंडी जहाज के मुल्की हदन की भनचड़ी से सख्त एहतजाज भारतीय नाजिम मरमूर की परदेही ऑफिस में तलबी परदे तर्जुमान पाक बहरिया पहरी सितंबर का पाकिस्तानी खास इक्तिसादी जोन में सीज पार्क 26 मशकू कर रही है 7 सितंबर का भारतीय सामुंडी जहाज ए हेलीकॉप्टर मशकन वारे इलाके में दाखिल थे जी कोशिश कंदा रहा भारतीय सामुंडी जहाज पाकिस्तान के सामुंडी हदन की चिर डारींदड़ ए गैर जिम्मेवारियों हरकतू कय 15 सितंबर से INS कोलकाता खतरनाक अंदाज में रुख तब्दील कर PNS हुनेन सां टकराइजी वियो PNS हुनेन पारां बचाव जी कोशिश बावजूद भारतीय जहाज सां रगड़जण जो वाकियो पेश आयो वाके खां पोए INS कोलकाता रफ्तार वधाई ऐं इलाइक़े मां भॼी वियो पाक बहरिया जे पेशावराणा ऐं ज़िम्मेवाराणे तर्ज़ अमल सूरतयाल खे वधीक भुगजण खां रोकियो उस्ता मोहम्मद में गड़ी खेरो वासी डॉक्टर जो घर मां गोलियों लगल लाश हथ पुलिस जांच लाए डॉक्टर की घरवारी के पैंजी तहवील में वठी पुछा गाछा शुरू करे छी पुलिस जो चवण आए तो डॉक्टर जो मौत कतल आए या अपघात जांच बाद खबर पौंदी राधड़ में तालीम खाते में पटेवाले जो 16 साल का पगारू न मिलने खिलाफ पगार बारन सा गड एहतजाज गोट फजल आगरो स्कूल के पटेवाले अब्दुल कादिर आगरे चयो त 16 साल का ड्यूटी कर रो आया पर एक भी पगार न डनी वही है पगार न मिलने सबब बार बुकू काटण से मजबूर आन पगारू जारी कई वजन
4: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
5: थम थम थम के
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: This program is brought to you by
7: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
8: duniya ke zyadatar mumalik se polio ka khatma ho chuka hai sirf do mulk rehte hain jahan ye virus abhi tak bachchon ka mehfooz mustaqbil chheen raha hai aur badkismati se hamara mulk bhi in do mumalik mein shamil hai ab zimmedari hum sab ki hai har muhim ke dauran apne bachchon ko polio se bachao ke do qatre lazmi pilwayein पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
9: आ, आ, आ, आ, अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
9: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
9: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
10: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
11: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
10: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
11: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
10: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 03125252586
10: जी हा 2315525786
11: GAFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़

0: स्ट्रेंथ के हो तो आवाज भी स्ट्रेंथ की है। GFM 88 नेटवर्क स्ट्रेंथ की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल माहिरवई, जकच हम द सास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यादवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयावनिवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुनाओ द्रवले हुमशी, नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई, जकच हम द गसास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरिमुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो का बचाव जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
6: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Apna shahar, apna ghar, Matli aur Matli ki awaaz GFM 90.4.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली।
0: 90.4

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: Matli ke ho to awaaz bhi matli ki hai.
2: Sunte raho GFM 90.4.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
3: सऊदी अरब जो साथ ॾियण जो अज़म परॾेही तर्जुमान सजाद हैदर प्रेस ब्रीफिंग में चयो त मके खे निशानो बणाइण शर्मनाक अमल आहे। अहिड़े अमल सां सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि जे जज़्बनि खे चियो रसियो आहे। हुसैन खे सऊदी अरब ख़िलाफ़ हमला रोकणा पवंदा। भारत 15 सेप्टेम्बर ते समुंड में पाकिस्तानी इक़्तिसादी ज़ोन में जारहाणी हरकत कई। भारतीय कदम खिते जे अमल लाइ ख़तरो बणजी विया आहिनि। सिख यात्रियुनि खे भारत वञण खां रोकण वारनि ख़बरूं ग़लति आहिनि। पाकिस्तान सिर्फ़ वैसाखीअ लाइ 2800 खां वधीक वीज़ा जारी कया। करतारपुर राहदारी बे भारत बंदि करे छॾी आहे। पाकिस्तान सिख यात्रियुनि जी आजियां करण लाइ तयार आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराक्ची ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर विच में फोन ते राब्तो खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरानी मीडिया मूजिब अब्बास सिराक्ची तुर्किया जे परॾेही वज़ीर सां टेलीफोनिक राब्तो कयो। अब्बास सिराक्ची चयो आहे त ईरान अवाम जे हक़नि ऐं मुफ़ादनि जी ज़मानत ॾींदड़ सिफ़ारिश आजियां करे थो। चीन नथो चाहे त इलाक़ाई छिकताण जमन रेड सी ताईं पहुचे। सभई धुरियूं सूरतहाल खे वधीक मुंझाइण खां पासो कनि ऐं मसला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कनि। चीनी परॾेही वज़ीर बीजिंग में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराक्ची सां मुलाक़ात। वांग किंग चयो त चीन लाइ आलमी छिकताण ख़त्मु करण में तामीरी किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। सभई धुरियूं आपनाहर मुस्कुरण लाइ कदम खणनि। ईरान ऐं अमरीका जल्द खां जल्द इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती यादाश्त नामे तरफ़ अचनि। अमेरिकी सदर ईरान जंग जल्द ख़त्म करण जी उमीद ज़ाहिर करे छॾी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त ईरान ख़िलाफ़ जंग पुॼाणीअ ते आहे। रॉयटर्स मूजिब ट्रंप जे बयान जी उबतड़ जंग वधीक पखेड़जण जो ख़दशो वधी वियो आहे। अमेरिकी मीडिया दावा कई आहे त अंगारे गरियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली जे इजलास में ट्रंप जे नार वारनि मुल्कनि सां मुलाक़ात जो इम्कान आहे। अमेरिकी इख़्तियारनि जी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फोर्स जे ज़िले आवरान में कार्रवाई दौरान 3 दहशतगर्द जहनम भेड़ा कया विया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार हथु कया विया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि दानिश यूनिवर्सिटी बाबति इजलास। दानिश यूनिवर्सिटी जे क़याम लाइ वज़ीर आज़म जी हिदायत ते ॾिनल अखभराई बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। वज़ीर आज़म चयो त होशियार ऐं मुस्तक़ शागिर्दनि खे मेरिट ते मयारी ऐं जदीद तालीम जी फ़राहमी तरजीह आहे।

वेझो वनवा में वेठल नारी मुबैना तौर अगवा। एनसी दाखिल हक भाऊ कॉलोनी वासी वनवा में वेठल यतीम नारी मरियम चनो मुबैना तौर अगवा थी वही। नारी के भाउ जाकिर चनो जो चवण है जवाबदार मोहम्मद बुड़ो पेंजे साथिन सा गर घर भातिन के यर्कमाल बनाए भेण के अगवा को है। वाकई जी एनसी दाखिल करने बावजूद पुलिस कुछ भी ना कि इंसाफ किया वे। पुलिस जो चवण है नारी के मुबैना अगवा जी एनसी दाखिल कराई वही है। जांच क्यों पाया उस्ताद मोहम्मद ने गड़ी खैरो वासी डॉक्टर जो घर में गोलियों लगल लाश हथायो है। पुलिस जांच लाए डॉक्टर की घरवारी के पैंजी तेवील में वही पुछा गाछा शुरू कर छी। पुलिस जो चवण है डॉक्टर जो मौत कतल है या आपघात जांच बाद खबर पवंदी।

0: मटियारी गंबट ऐं शाहपुर चाकर में रोड हादसा, औरत समेत टे ॼणा फौत, छह जख़्मी। मटियारी वेझो मुसाफ़िर कोच जे टकर में रोड क्रॉस कंदड़ औरत आशी मेघवाड़ फौत, हिकु ज़ख़्मी। गंबट लग कार जो मोटरसाइकिल सां टकर, नेशनल बैंक खोड़ा जो मैनेजर ज़ुल्फ़कार अबड़ो फौत। शाहपुर चाकर में पलाल सां भरियल ट्रैक्टर ट्रालीअ खे टकर जो लॻण सबबि 23 वरनि जो खैर बख़्श बिरोही फौत थी वियो, 5 ॼणा ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी।
4: जेकॾहिं जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ा मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ा मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ा मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस

0: मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जू पकियूं छिटू लगरा लाए खुश खबरी चाहियो था अवां जे घरन जू छितूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

ओके जी, बिल्कुल आप सुन रहे हैं ZFM88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ बड़ी प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरती की दुनिया में आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है और साथ ही साथ आप लोग जनाब प्रोग्राम सुन रहे हैं YTHND स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जो बात है वो ये कि भाई आप लोगों को आज के प्रोग्राम का टॉपिक बताएं, उसके बाद आप लोगों को बताएं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम के टॉपिक की जाने बात आते हैं। तो आज का जो मेरा सवाल आप लोगों से होने वाला है, यानी कि प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो एक पहेली होगी, पहेली कह सकते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। हाँ जी, वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घुड़ने वाले लिसनर से यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनते हैं, तो जी अपने होने का एहसास दिलाइए, प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम हो जाइए और ऐसा कीजिए, अपना सेलफोन उठाने के साथ साथ मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जिए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है और जिए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है और वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक

कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। तीनों काम आप लोगों ने ही करने हैं, तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से सुन रहे हैं ये भी बताइए। और सबसे बेहतरीन बात कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, ये भी आप जरा शेयर किया करें ताकि हमें पता चले कि कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और कहां कहां पर अवेलेबल कराना अभी बाकी रहती है। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, आप क्या करेंगे, आपको जो नंबर बताऊंगी प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर बस आपने रابطہ कर लेना है। नंबर के ऊपर رابطہ करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी जाएगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश। अगर हाँ ये बात है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिलती है लेकिन डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी आप नंबर के ऊपर رابطہ कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल करा दिया जाए। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 0333273843 09। बुरी 300 बच्ची है 73 84 309। ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907। ॿुड़ी 312-50-25-907। ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था बिना कंहिं देरी जे, बिना कंहिं। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, उतां वञी आसानी सां परचेज करे अचो ऐं मूंखे ॿुधायो भाजी असां बि वठी आया आहियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओयो अथई जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आयो आहे, तव्हां वठी आया कोन, मूंखे जल्दी ॿुधायो। मूंखे ॿुधायो उहो कहिड़ो इंसान आहे जंहिंखे ख़राब सिहत सां फ़ाइदो मिलंदो आहे, समझो था। उन खां अलावा तव्हां असांखे जॉइन कंदा वञो पिया, बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि, प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम रखिया वेंदा। सभ खां पहिरियां सॼे प्रोग्राम में अनवर भाउ मौजूदु आहे, के ताईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अदी वेलकम कयूं था वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो में, तव्हांखे बि सोणा भाउ वेलकम कयूं था। अच्छा सदाम अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हज़ार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हज़ार भाई, में ठीक ठाक आप बताएं कैसे हैं। और जवान मोहम्मद बलचल शंभानी भाई हमारे साथ हैं, भाई को वेलकम कहा जाता है। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं जी, मेलसी से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और मेलसी में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है जनाब, तो बस आप जाइएगा अपने करीबी जनरल स्टोर से जरा मालूम लीजिएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। वैसे मुझे पता है कि मेलसी में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है। और अनवर भात हमारा लिंक शेयर किया, ओके हमारे साथ ही गानों हलाए बैठू था। और फरवा कहती है वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। हाय आपी, आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल। यस आप बताएं आप कैसी हैं। फैसल अहमदानी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम बाबा, वालेकुम अस्सलाम बाबा।

0: फार्मेसी मातली हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

बिल्कुल वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास, और आप सुन रहे हैं जी FM88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली। ओके जी, नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी इज कैन ब्यूटी शो। भाई साहब, आप लोगों तक नशर किया जा रहा है प्रोग्राम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है, बढ़िया हो गया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने वाला प्रोडक्ट है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको इस तरह से खूबसूरत बनाने वाला प्रोडक्ट है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि हम इतना प्यारा प्रोडक्ट जो था ना वो मिस कर रहे थे, हम नहीं लगा रहे थे, और आपको लगाना चाहिए मेरे कहने पर, क्योंकि आप जब इस्तेमाल करेंगे ना तो फौरन बाद ही आपको मालूम हो जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी थी। ओके जी, तो जरा डिटेल मैं आपको समझाने लगी हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे पहली बात तो ये है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना वो ऐसा फार्मूला होता है जैसे डॉक्टर्स स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो मिलकर बनाते हैं। तो इस फार्मूले को लगाने के सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि इसे हर स्किन वाला इंसान इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, नॉर्मल हो, किसी भी टोन की हो, तो उसके ऊपर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात ये मेडिकेटेड फार्मूला है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मूलेशन है, अल्फार्बोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। नाम सुनकर आपको एहसास होगा कि भाई ये तो बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट लग रहा है, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन ये आपको महंगा नहीं मिलेगा, मुनासिब सी कीमतों में आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आपको बताया कि ये 2-in-1 फार्मूला है, तो वो इसलिए 2-in-1 फार्मूला है क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना ये आपकी स्किन के अंदर जाकर आपकी स्किन पर ऐसा निखार आने वाले हैं, जैसे आपने देखा होगा जो खवातीन बड़े महंगे महंगे फेशियल करा के आती है ना, तो उनके चेहरे पर जो निखार उनको मिलता है बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत सा, तो वही आपको रिजल्ट जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम देने वाली है, क्योंकि ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये आपके लिए एक नाइट क्रीम भी हो गई, आपके लिए फेशियल भी हो गई, और आपके लिए मुनासिब पैसों में भी मिलेगी, और आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका वक्त भी बच जाएगा, बस आप रात के टाइम सोने से पहले डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिएगा, आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जनाब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से जो है ना अच्छे खासे रिजल्ट देने वाली है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कुल मिलाकर आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए जनाब, क्या ही बात है, याद करेंगे मुझे कि सिद्रा वाज क्रीम दसी थी। तो अगर तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो था या वरी तमाम तैयारी में आता हा बाबा सा इस्तेमाल करना सी, तमाम जल्दी पांजे करीबी जनरल स्टोर से हलिया वनो त तमाम मालूम वठो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम जले अवेलेबल कराए छडी आए, अगर फर्ज कयो नथी मिले त न चला ताके प्रोग्राम में नंबर बुधायो विंदो आहे, नंबर ती तमाम रातो करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सगो था बिल्कुल आसानी सा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो थी वही, चलो हाने ताके डी स्किन जे फेस वॉश के बारे में भी थोड़ी घणी गाल बुधाईंदी हला। डी स्किन जो जको फेस वॉश आहे ना हे भी बिल्कुल मार्केट में अची वयो आहे, जेके माण्हू वनन पया दुकान ते उनन के नपो मिले त बाबा असां वट कोनी अवेलेबल, हाने तव्हां दुकान ते वेंदा त तव्हां खे डी स्किन जो फेस वॉश भी मार्केट में मिली पयो। अगर तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण चाहियो था त डी स्किन जो फेस वॉश जेको आहे पंहिंजे अवेलेबल करायो करीबी जनरल स्टोर से, नंबर ते राबतो कंदा रहो। और डी स्किन फेस वॉश की अगर बात हो तो जनाब ये ऐसा फेस वॉश है जो आपने जिंदगी में पहले कभी यूज नहीं किया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई है या जिस तरह से डी स्किन का फेस वॉश तैयार किया गया है इतना जबरदस्त है, इतना कमाल का है कि लगाने के बाद आप खुद ही कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। अच्छा, डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम के साथ तैयार किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना ये इतना की स्किन के लिए कोई फायदेमंद

फिर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है और हाइड्रेट भी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहे, हमेशा क्लीन रहे, हमेशा आपके चेहरे पर ग्लो नजर आना चाहिए, तो डी स्किन का फेस वॉश आप यूज करके देखिएगा। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही डी स्किन का फेस वॉश भी आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं। क्योंकि कई मरतबा ये भी सीन हो जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है, खवातीन ही लगाएंगे। भाई अब जमाना बड़ा चेंज हो चुका है, अब जैसे भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं ना, तो उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि उसे मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खवातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मिलने वाले हैं जनाब इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट, तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और परचेज कराते जाइए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नंबर को डायल कीजिए। नंबर है जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 5970। यो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309। ही नंबर जो तुम डायल कंदा, बई नंबर आयन तुम बिन्हीं दी रातों करे सको था। नंबर से रातों करे तुम किथे भी अवेलेबल है, केड़ी भी सिटी का तुम जो ताल्लुक है, केड़ी भी गोठ का तुम जो ताल्लुक है, हर जगह ते तुम आराम से अवेलेबल कराए सको था। बाबा उनन का मालूमात वठो, कॉल कयो, मैसेज कयो, उनन के दस्यो असा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगान चाहियो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथा असा के मिली सके थी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आप डिजर्व करते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट जब आपके लिए मार्केट में आ चुका है, तो उसे जरा पहचानिए, यूज कीजिए और खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए। ओके जनाब, तो ये तो बात थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ जी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करें जनाब 8881 पर और फेसबुक पर। तो फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा जरा लाइक और शेयर करते रहिएगा। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताइए वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। हाँ जी, वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है, आज आप मुझे इस सवाल का जवाब बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे ज्वाइन कीजिए और बताइए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है जो कि हमेशा से आप जिस प्रोडक्ट का इंतजार करते थे, तो फायदा उठाइए ना। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए।

आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए. मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक आंसर. अच्छा, आप तो बात को पता नहीं कहाँ लेकर

ही अच्छे दिन थे। तमाम बिल्कुल सुठी गाल कही। ओके जी, कहते हैं एक नौजवान बैंक में सिक्योरिटी गार्ड जी नौकरी लाए वयो। पुछोस अंग्रेजी ईंदी थी, नौजवान चयो फुर कंदड़ इंग्लैंड में ईंदा जा। पॉइंट तो है। अब्दुल रजाक जरदारिया पे सुन रहे हैं, सकरन से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। साजिद अली कहते हैं, समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की, ये जिंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, दोस्त ना हो तो जिंदगी किस काम की। वालेकुम अस्सलाम, कैफ हाल प्रोग्राम, माशाल्लाह माशाल्लाह। सदरा मुस्कान ओखी जी, आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। परवा कहती है, आप ही अर्ज किया है, इतना अर्ज मत किया करें, मुझे ये बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं। अच्छा यासीन खान कहते हैं कि मैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट का शॉप लगा रहा हूँ, जबरदस्त है। हाँ जी, शॉप लगाइए लगाइए लगाइए। और इनके अलावा जी हमारे 7000 भाई कहते हैं, वो इंसान, अच्छा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, जबरदस्त हो गया। अच्छा फहीम शेख भाई कहते हैं, विसरे सारो लोग, शाल न विसरे तू तो केडो मुंह सांडियो आहे साह में। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम बदर। अदा छाल आइन खुश आयो, सफा चाक स्लेट कला मस्जिद दबी, असा भी अची वयासीं, थोड़ी देर करे प्रोग्राम तो लाजवाब भाई हमेशा जिया अवा वांगे। अच्छा चलो अच्छी वया, देर आए दुरुस्त आए। और आप बताए डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी मैडम ने यूज करी या फिर नहीं? आप फेस वॉश कब लेने जा रहे हैं? अच्छा ऐसा करें, जो नंबर आपको बता रहे ना उनके ऊपर आप रब्ता कर लिया करें, और नंबर के ऊपर जैसे ही आप रब्ता करेंगे ना तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अवेलेबल कराइए, आसानियां कीजिए अपने लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जैसा प्रोडक्ट आपने कभी यूज नहीं किया होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो ट्राई करके देखिएगा, मजे आ जाएंगे। अच्छा यासीन कहते हैं, शमन जी गाने जो आसरो करिया, बिल्कुल जी कयो कयो, शमन हलाइंदासी जियो करे।

जी बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल करानी बाकी रहती है। अवेलेबल कराइए, खूबसूरती का ख्याल रखिए मेरी जान, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आप डिजर्व करते हैं, है ना, तो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा यहाँ पर हमारे साथ यासीन कहते हैं, अच्छा तमाम वट मौसम सुठो आहे, बरसात जो इम्कान आहे, चले ठीक है, अगर बरसात हो जाए तो एंजॉय कीजिएगा। चाचा कहते हैं मुझे तबियत खराब आहे, मुखे तक को फायदो को न थियो आ। अच्छा टॉपिक हाँ सही से अच्छा तान जो फायदो न थींदो, बहरहाल उन जो फायदो जरूर थींदो। अच्छा उन खराब महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे, ग्रेट होस्टिंग मैम, थैंक यू वेरी मच सर, ये आपकी मोहब्बतें हैं जी। अच्छा गुलाम मोहम्मद मरी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, आप ही सिद्रा कैसी हैं, आप तो मेरी नाइस है, रुखसार केसेस हूँ, डॉक्टर कश्यप मरी, ओके कश्यप आपको वेलकम कह रहे, डॉक्टर साहिबा कैसी हैं, ठीक ठाक है, और कश्यप हमें मीरपुर खास से सुन रही हैं, कश्यप मीरपुर खास में हमने आप लोगों के लिए स्पेशली डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी है, तो जाइएगा और परचेज कीजिए।

पिएगा। हाँ, कुछ लोग अगर क्रीमों से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, कोई स्किन का इश्यू है या फिर कोई ऐसे ही, तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये तो भाई इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि जब आप यूज करेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि भाई सिद्रा इतना क्यों बताती है। तो डी स्किन का फेस वॉश आप ट्राई करके देखिएगा, यकीन जाने ऐसे प्रोडक्ट आपने कभी नहीं ट्राई करके देखे होंगे। इतनी प्रीमियम क्वालिटी के ये प्रोडक्ट है, तो यूज कीजिए। ऑल स्किन टाइप के लिए है, ये भी चीज का कोई टेंशन नहीं कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है नहीं लगा पाएंगे, आप भी लगा पाएंगे क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हमने एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि होने वाला है हमारे फेवरेट सिंगर की आवाज में, पहचान लीजिएगा। अच्छा फहीम भाई, आपने टॉपिक सुना? हाँ सुन लिया होगा। अच्छा हजार भाई कहते हैं, भाई ये तो कमाल हो गया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, वही तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, खूबसूरती में इजाफा हासिल कीजिए।

अच्छा महर इरफान सियाल साहब कहते हैं कि वेल प्रेजेंटेशन अबाउट डी स्किन ब्यूटी क्रीम एम आर जे, थैंक यू सर, जजाकल्ला। और नसीम गुलाम दीन कहते हैं कि विलेज अली बख्श जखड़ो से, नसीम गुलाम जखड़ो, वालेकुम अस्सलाम सिदरा भाई, कैसी हैं आप, आपका शो आपकी तरह सुठो आ, सदा खिलंदी कर, हाजिर हाजिर हुकुम खपे तव्हांजो, थैंक यू प्यारा भाव। तव्हां असांखे नूरियाबाद खां ज्वाइन कयो आहे, ॾियो हाल अहिवाल, नूरियाबाद में टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई।

अच्छा वासा भाई आ चुके हैं मुझे प्यारी भेण कीड़ा हालान खुशायो सफा चाक संगी भली सफा मजे में ता पांजा हाला वाल दियो किथे गुम हुआ हिदायतला तमाम भी टॉपिक जो जवाब ने नवाए बढ़िया हो गया जी। मीर मोहम्मद बिरोही हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सदरा मुस्कान, नाइस योर शो, थैंक यू। और नसीम भाई कहते हैं कि सीख ना पाया मैं मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने कई अपने छीन लिए मुझसे। अली ये बहुत बड़ा कमेंट है तो मैं जरा इसको इतना ही रीड करूंगी। चाचा खालिद कहते हैं कि कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब बिल्कुल जी बिल्कुल सबने सही जवाब बताया था, इसीलिए शायद मुझे लास्ट में जवाब नहीं बताना पड़ा था। और फरवा कहती है आपका शो लाइक और शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया स्वीटी।

0: आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करती रहिए. यासीन कहते हैं कि आपका पुराना
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: जमानत रिंदर सफारती हल जी आज यहाँ करे थो. चीन नथो चाहे त इलाकाई छिकताण यमन ऐं रेड सी ताईं पहुचे. सवई धुरियूं सूरतयाल खे वधीक मुंझाइण खां पासो कनि ऐं मसला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कनि. चीनी परडेही वज़ीर जी बीजिंग में ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्शे सां मुलाक़ात. वांगी चयो त चीन आलमी छिकताण ख़त्म करण में तामीरी किरदार अदा करण लाइ तयार आहे. सवई धुरियूं आबना हरमुज़ खोलण लाइ कदम खणनि. ईरान ऐं अमेरिका जल्द खां जल्द इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे तरफ़ अचनि. पाकिस्तान पारां मके जे तहफ़ुज़ लाइ सऊदी अरब जो साथ ॾियण जो अज़म परडे॒ही तर्जुमान सजाद हैदर प्रेस ब्रीफिंग में चयो त मके खे निशानो बणाइण शर्मनाक अमल आहे. अहिड़े अमल सां सॼी दुनिया जे मुसलमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसियो आहे. हुसिन खे सऊदी अरब ख़िलाफ़ हमला रोकणा पवंदा. भारत 15 सेप्टेम्बर ते समुंड में पाकिस्तानी इक़्तिसादी ज़ोन में जाराणी हरकत कई हुई. भारतीय क़दम खिते जे अमुन लाइ ख़तरो बणिजी विया आहिनि. सिख यात्रियुनि खे भारत वञण खां रोकण वारियूं ख़बरूं ग़लति आहिनि. पाकिस्तान सिर्फ़ वैसाखीअ लाइ 2800 खां वधीक वीज़ा जारी कया. करतारपुर राहदारी बि भारत बंदि करे छॾी आहे. पाकिस्तान सिख यात्रियुनि जी आजियां करण लाइ तयार आहे. अमरीकी सदर ईरान जंग जल्द ख़त्म करण जी उमीद ज़ाहिर करे छॾी. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त ईरान ख़िलाफ़ जंग पुॼाणीअ ते आहे. रॉयटर्स मूजिबि ट्रंप जे बयान जे उबतड़ जंग वधीक पखेड़जण जो ख़दशो वधी वियो आहे. अमेरिकी मीडिया दावा कई आहे त अंगारे गरियल क़ौमनि जी जनरल असेंबलीअ जे इजलास में ट्रंप जे नार वारनि मुल्कनि सां मुलाक़ात जो इम्कान आहे. अमेरिकी इख़्तियारनि जे हूसी अॻवाननि सां ओमान में गुझी मुलाक़ात जो इंकशाफ़. बरतानवी ख़बरू इदारे रॉयटर्स दावा कई आहे त गुज़िरियल आचर ते मुसक़त अमेरिकी इख़्तियारनि अमेरिकी सफ़ारतखाने में हुसिन जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात कई. मुलाक़ात में अमेरिकी पाबंदी जी लिस्ट में शामिल मोहम्मद अब्दुल सलाम में मौजूद हो. हुसिन जो सऊदी इतिहाद ते यमन में टेली कम्यूनिकेशन टावर्स ते फज़ाई हमलनि जो बि इल्ज़ाम. सऊदी अरब पारां हुसिन जे इल्ज़ाम बाबति मौक़िफ़ साम्हूं न अची सघियो आहे. सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि फोर्स जे ज़िले आवरान में कार्रवाई दौरान टे दहशतगर्द जनम बेड़ा कया विया. ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वरी अंग में हथियार हथ कया विया. कराची जे इलाइक़े सरजानी टाउन में औरत ऐं संदसि टिनि ॿारनि जे क़तल केस जो जवाबदार गिरफ़्तार. DIG इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त जवाबदार मक़तूल औरत जे मढ़ जो भेणवियो हो ऐं संदन घर ईंदो रहंदो हो. जवाबदार औरत सां ज़्याती करण जी कोशिश कई. मज़ामत करण ते जवाबदार पहिरियों माउ ऐं संदसि धीअ खे क़तल कयो. बाद में मदरसे मां ईंदड़ ॿिनि ॿारनि खे बि क़तल कयो. ठुलवे जो वनवा में वेठल नारी मुबैना तौर अगवा MC दाख़िल. हक भाउ कॉलोनी वासी वनवा में वेठल यतीम नारी मरियम चनो मुबैना तौर अगवा थी वई. नारी जे भाउ ज़ाकिर चनो जो चवण आहे त जवाबदारनि मोहम्मद बुड़ो पंहिंजे साथियुनि सां गॾु घर भातियुनि खे जरगमाल बणाए भेण खे अगवा कयो. वाके जी NC दाख़िल करण बावजूद पुलिस कुझु नाहे कयो. इंसाफ़ कयो वञे. पुलिस जो चवण आहे त नारी जे मुबैना अगवा जी NC दाख़िल कराई वई आहे. जांच करियूं पिया. ओस्ता मोहम्मद में गढ़ी खेरो वासी डॉक्टर जो घर मां गोलियूं लॻल लाश हथ. पुलिस जांच लाइ डॉक्टर जी घरवारीअ खे पंहिंजी तहवील में वठी पुछा गाछा शुरू करे छॾी. पुलिस जो चवण आहे त डॉक्टर जो मौत क़तल आहे या आपघात. जांच बाद ख़बर पवंदी. मटियारी में गंबट ऐं शाहपुर चाकर में रोड हादसा, औरत समेत टे जणा फौत, छह जख्मी। मटियारी वेझो मुसाफिर कोच जे टकर में रोड क्रॉस कंदड़ औरत आशी मेघवाड़ फौत, हिकु जख्मी। गंबट लग कार जो मोटरसाइकिल सां टकर, नेशनल बैंक खोड़ा जो मैनेजर ज़ुल्फकार अबड़ो फौत। शाहपुर चाकर में पलाल सां भरियल ट्रैक्टर ट्रालीअ खे कार जो टकर लॻण सबब टेवीह वरनि जो खेर बख़्श विरोही फौत थी वियो, पंज ॼणा ज़ख़्मी। ऐं फैज़गंज वेझो टे ॾींहं अॻु गुम थियल लींगर जो फुटिन जे गोदाम मां लाश हथायो आहे। घर में कोराम मची वियो आहे। जलाल जे चोदगीअ मां गुम थियल सत वरनि जे सरफराज पुट मुख़्तियार मजीदाणी जो लाश मिलियो आहे। वारसनि जो चवण आहे त लींगर जी गुमशुदगी बाद लगातार ॻोल्हा कई पर हथ न आयो। अॼु मज़दूरनि ट्राली भरण लाइ फुटियूं कढियूं त लींगर जो फुटिन हेठां दॿियल लाश मिलियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयोन्नवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونو درول همشی نو پدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا هغی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रत अचण सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287 सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFMATA नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माजली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जनाब, सर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ जरा बातें हो रही हैं और जरा जो बातें हो रही है ना वो आप लोगों के फायदे के लिए ही हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखेंगे आपको पता नहीं होना चाहिए कि भाई जो जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है आपके चेहरे के लिए, कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला है, आपकी स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन डॉक्टर्स ने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया है आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए, आपके चेहरे पर एक अच्छा सा प्रोडक्ट चाहिए इसके लिए और आपके स्किन को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको अपनी स्किन प्यारी नहीं है? ये जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना उनको बाय बाय बोलिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो अगर आप क्रीमों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वैसे लगानी तो चाहिए, कोई इश्यू नहीं है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं लगा सकते हैं, कोई मसला है, कोई इश्यू है, तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो डी स्किन की अगर फेस वॉश की यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि पर्सनली अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ तो भाई मुझे ये प्रोडक्ट बड़े कमाल के लगते हैं। आप भी लगाइएगा, जितने जितने मेरे अराउंड जितने भी लोगों ने यूज करे हैं ना उन सब लोगों ने बड़ा अच्छा सा मुझे फीडबैक दिया है और इनका बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, तभी जाकर मैं इस चीज पर पहुंची हूँ कि आप सब लोग भी यूज करके देखें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि वाकई भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये आप यूज कर सकते हैं हर स्किन के ऊपर, और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये भाई इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए है। ओके जनाब, तो अगर आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में ये प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रहे प्रोडक्ट, जब परचेज करने जाते हैं आपको दुकानदार कहता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ये ले जाएं, फलां प्रोडक्ट ले जाएं, इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा कोई चूना आपको भी लगाए तो आप ऐसा कीजिएगा, उन्हें बोलिए फुल स्टॉप लगाओ, थांबा थांबा भाई साहब, आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, और जब वो अवेलेबल कराएंगे आप बोलिए हम जब अवेलेबल करा लेंगे ना तब आकर आपसे परचेज कर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए और जो आपको प्रोग्राम में नंबर्स बताए जाते हैं ना उनके ऊपर राबता करते रहिए। ओके जी, तो नंबर्स क्या हैं जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें, तो नंबर है जनाब 03-1250-25907 बुड़ी 312 50 25 970 आई मेरा नंबर आहे 033-2738-4309 बुड़ी 332 73-84-309। तो ये नंबर आप जल्दी से डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए और जी उसके बाद जाकर परचेज कीजिए, क्योंकि जब आप परचेज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को जरा पहचानिए और आपकी खूबसूरती क्या चाहती है आपसे ये आपको पता होना चाहिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी जिंदगी बदल देगा, इतने परफेक्ट प्रोडक्ट है कि ट्राई करेंगे तो अंदाजा लग ही जाएगा। यहाँ पर शमन का गाना लगाया है और यासीन खान को डेडिकेट जाएगा ये गाना उनको भी जिन्होंने शमन के गाने की फरमाइश कर दी थी, और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा मिलता है।

अच्छा वो सब तो ठीक है, डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई नहीं, ये तो बताइए, पोस्ट को लाइक शेयर किया ये तो बताइए। और जी यहाँ पर हम आते हैं जरा आप लोगों के मैसेजेस की जानिब जो कि मुझे पैनल पर रिसीव हुए। और यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज मिला है वो इस्माइल थरपारकर से है। दीदी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मैडम, क्या हाल है आपके? शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। इतना ही मैसेज किया या मैसेज आपका मिसिंग पार्ट हो चुका है जरा बताइएगा मुझे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है इस्माइल, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये हमारे साथ है डॉक्टर जी एम बलोच मीरपुर खास से, कहते हैं आपका शो नाई से है, प्ले अर्शद महमूद शाम का एक पहर मेरे नाम करूँ, क्या बातें लगाते हैं जी। शहजाद अली राजपर हमारे साथ फ्रॉम बसीरो के थे, अस्सलाम वालेकुम अदी सिद्रा, वेलकम टू शो अदा, तुम मोहब्बत हुए तुम्हें प्रोग्राम में।

गाना तो सुनाओ अगर। अच्छा यो गानो लिखियो तमा सही सही कहते हैं। मेरा बेटा आजाद खान और आमिर खान भी हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी भाइयों को, वेलकम हो गया। और ये मौजूद है रसूलाबाद खान अब्दुल सिंह शम्बानी, वालेकुम अस्सलाम अदीब। वो इंसान बिल्कुल बिल्कुल तमाम सही आयो। बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ कहते बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है। हाओ मीरपुर खास वाला मानो इस्तेमाल कन पया बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम भी कयो बुधायो किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है। अच्छा मायरा भी असानी प्रोग्राम बुधे पाई, मायरा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे पाई। वाह साई वाह। फजली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहती है, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजी शेजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान। कैसी हो स्वीटी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कहती है सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी सबको ही वेलकम हो गया, बहुत शुक्रिया फजली आप हमारे साथ हैं। और इसी के साथ साथ गाना मस्त मस्त खत्म हो गया, एक और गाना है जो आप जानते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है। अच्छा हिन गाने ते अलाए छो हिकड़ो माण्हू मूंखे चिड़ाईंदो पर ही गानो अलाए छो मूंखे वणंदो आहे। चलो ही गानो ॿुधूं था मुमताज मलाई जो काफी टाइम खां वठी गानो असां कोन ॿुधो सी, तो अॼु ॿुधंदासी। प्रोग्राम आहे जनाब वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: ओके जी ओके, कोशिश करूंगी सबकी ही फरमाइशें तकरीबन प्रोग्राम में चले, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें। और स्मार्टू आपने भी फरमाइश कर दी, मैं कोशिश करती हूँ। अनवर भाई कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। कुछ तो हुआ है सर्द मौसम का, आपका मैसेज ऊपर चल रहा गया।
1: सोचे भी न थो सघा, अचानक कदम ही रोके भी न थो सघा।
0: अच्छा हिदायतुल्लाह क्या बात है जी, आपको हमारी प्लेलिस्ट पसंद आती है, बहुत बढ़िया। वासु भाई कहते हैं बियो बुधायो अधिक खुश लगा पाया आयो, तबियत सेहत सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तां पांजो बुधायो। अच्छा। और आर एन ए आर हमारे साथ है विलेज हाजी खेर मोहम्मद खोखर इमाम बख्श खोखर अंसर तुम दिनो आ सही आई जी मोहब्बतू तांजो प्रोग्राम बुधो पया। हां जी अच्छा अली मोहम्मद भाई भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको प्रोग्राम पसंद है बहुत शुक्रिया उसके लिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी यूज कीजिएगा, आपको वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। नसर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं, नसर मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं आज आतिफ असलम का गाना तो चलाएं, हाजिर टाइम बची हो तो बिल्कुल अलाइंदा सी। और फहीम भा कहते हैं कि दादा मुझको फेस वॉश के लिफ्टन में नहीं मिल रहा है, और आपको कैसे पता चला? भाई कल आप ही ने तो बताया था मुझे कैसे वरना पता चलना था, आप ही बता गए, भूल जाते हैं अपनी बातें, ना करें भाई ना करें। बिल्कुल जी मैडम से जरा फीडबैक लीजिएगा, वैसे दो दिनों के बाद जो है ना आपको अच्छा सा रिजल्ट देती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो दो रातें अच्छे से मैडम को लगाने दीजिए, उसके बाद पूछिएगा मैडम डी स्किन ब्यूटी क्रीम कि लगी तवा के।

हो गणेश। अली मोहम्मद बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मदे जी से आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। दी स्किन ब्यूटी क्रीम कहते हैं शो नाई से, बहुत बढ़िया। और जी हमारे साथ हैं हजार भाई, थैंक यू थैंक यू। सिंपल रोमियो हमें सुन रहे हैं, हेलो। अच्छा नसीम गुलामदीन भाई कहते हैं कि जी मिले थी नूरियाबाद में डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असा तो पूरी गोठ के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी डी है।

0: جايبه ده.
1: अच्छा प्रिंस ममताज हमारे साथ हैं, कहते हैं नूरियाबाद से प्रिंस ममताज पालारी प्रोग्राम तमाम बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच प्रिंस साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हजार भाई कहते हैं सिस्टर हमारे वर्क का टाइम हो गया, चलें जी फिर आप अपना काम कीजिए। और यासीन खंड कहते हैं कि आपका शो पहली मर्तबा मैंने, क्या बात है एग्जैक्ट पूरी डेट के साथ आपको सब पता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपको सब चीजें याद है माशाल्लाह। आप दी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आप परचेज कीजिए। और फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ये भी ठीक है जी। और अमीर बख्श भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और दिया परी हमारे प्रोग्राम में कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सदरा मुस्कान, हाउ आर यू, और प्लीज प्ले निगत नाज एनी सॉन्ग डेडिकेट हिरा रिमशा एंड डेविल डेविल। ओ यानी कि ये बदला पूरा हो गया, उन्होंने आपको चुड़ैल बोला, आपने डेविल बोल दिया, हिसाब बराबर। चले निगर जो गानो बुध था हिरा के रिमशा के डेडी की था, थोड़ो थोड़ो मुखी भी कयोस। तो निगत मुखी भी वर्णन दिया है।

क्रीम लॻाइण खां पोइ पकी पकी ॻाल्हि आहे, तव्हां बाह लोड़ी घुमंदा, छो त हुसन ई तव्हांजे कॾहिं कॾहिं हूंदो, माण्हू तव्हांखां पुछंदा, ॾिसो त हाल अहिवाल त ॾियो, एॾी ख़ूबसूरती काॾां आंदी अथव, मूंखे ॿुधायो बाबा, हीउ टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे, ऐं तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए जीअं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो, पोइ तव्हां बि बाह लोड़ी घुमो। अच्छा मुगल उमरानी हमारे सादे भाई को वेलकम हो गया जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल अहमदानी आपको भी बहुत शुक्रिया वेलकम। प्रिंस मुमताज आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा, साबुन त हणंदा आहियो न, फेस वॉश त हणंदा आहियो न, या फिर मुंह भी कोन धोईंदा आहियो? मुंह धो त डी स्किन जो फेस वॉश लाज़मी ट्राई कजो, सही आहे। और दिया कहती है कि दिया कहती है कि पड़ा ही वास्ता हुसन के दुश्मनों से, अब खरीद के भी नहीं देते जालिम डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ तेरी ये तो गड़बड़ी हो गई, अब तेरा क्या होगा कालिया।

अच्छा मुलाजिम भाई आपको भी वेलकम हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। ओके जी, ओके ओके। अली रजा लगारी कहते हैं गोठ जाम खान लगारी से। अली रजा लगारी सिस्टर आप कैसी हैं? शो तमाम नाई से सॉन्ग का कोई भी अच्छा सॉन्ग का कोई भी अच्छा सा सॉन्ग प्ले करना। ओके जी, सॉन्ग का सॉन्ग प्ले करेंगे। अजहर लगारी और आकिब लगारी, आजम लगारी, अनवर लगारी, मजहर लगारी, अब्बास लगारी, बस क्यों इमाम बख्श खोखर, गुलाम मुस्तफा टालपुर, आरजे बाबू चौहान, ओके रे सबको वेलकम हो गया। अच्छा चाचा कहते हैं भाई गर्मी बहुत है कराची में, डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे लगाएं? आप रात के टाइम लगाकर सो जाइए। वैसे गर्मी क्यों अभी कराची में ज्यादा है, अब तो खत्म होना चाहिए गर्मी को, क्योंकि इधर तो मौसम ठीक ठाक हो गया है तो उधर भी ठीक होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी।

भाई वो मोलाई का बड़ा पुराना गाना है, सो अच्छा है सुनकर, मतलब मजा आता है, ऐसे बच्चों वाली शायरी लगती है अच्छा लगता है। अच्छा वफा शहजादो मक्सी में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। नज़र मोहम्मद भट्टी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। ऐं मां ॾिसां थी कोशिश कंदी तव्हां सभिनी भाउनि फरमाइशूं हलाए वठंदासीं, पर प्रोग्राम एतिरो नंढड़ो आहे, वरी तव्हां सभु भाइर फरमाइशूं कंदा आहियो, पोइ किथे मां पूरी पइजी सघां थी। सो बसि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल अञा ताईं कोन थी आहे त अवेलेबल करायो बाबा। अवेलेबल कराइण खां पोइ फौरन बाद वञो भॼंदा वठी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश यूज़ करे मूंखे ॿुधायो कीअं लॻो रिज़ल्ट, सोना थिया कोन। अच्छा तव्हां हिते वियो हाणे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आहे, मां जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचां थी, तव्हां काॾे न वञो, हिते वेठा हुजो, ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और हसीन हो जाइए।

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरत औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
10: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 0331-252-5786।
7: जी हा 2131-5526
10: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उगरायूं भुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ा मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ा मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 खां शाम जो 5 ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ा मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी।
11: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा बा कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इनन जे ख्वाबन के उडाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।

ओकेजी दिल दर्शन कान चरिया नाडो वीआईपी गानो असाइन जो है क्यों प्यार बिल्कुल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब बहुत ज्यादा की भाई हमारी खूबसूरती हमें मिल नहीं रही है बहुत ज्यादा टोटके ट्राई किए हैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा के देखे लेकिन फर्क कोई भी नहीं है तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके देखिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जितनी भी मैं बातें बताती हूँ ना वो सारी बातें बिल्कुल सच्ची अगर आप परचेज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई सिदरा भाजी जेको बुधायो सब सही बुधायो है तो तवा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा करीबी जनरल स्टोर से अगर अना तीन अवेलेबल को सब का पे तेजी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो उन्हें तुम इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप यूज करेंगे ना तो ये चीज तो आप जहन में रख लें कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है अल्फार्बोटीन है कोचिक एसिड है ग्लूटाथायोन है ये तमाम चीजें एड की गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर तब जाकर आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफा लाएगा आपकी खूबसूरती का ख्याल रखेगा और आपको हमेशा के लिए प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर गोरा गोरा बना देगा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को चाहिए मर्द हज़रात चाहिए आप खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए जनाब ये चीज भी आप लोगों को बताते चलो कि ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र

करती हूँ ना, तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप ऐसे मालूम हासिल करना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन एड की गई है। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तो भाई मतलब मजे ही हो जाएंगे। तो दी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और ये इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है कि पाकिस्तान में तो मिल ही मिल सकता है, लेकिन आपको ये बाहर के ममालकात में भी मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश भी ट्राई करते जाइए, क्योंकि खूबसूरती आप हासिल करना चाहते हैं आई नो, तो अगर आपके पास अच्छे वाले प्रोडक्ट होंगे तो ज्यादा आप और अच्छे तरीके से खूबसूरती हासिल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, चाहे आप मर्द हंसर आते हैं चाहे आप खवातीन। हाँ जी, गाना बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा गाना था। और इसी के साथ साथ जो भी नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर, उनके ऊपर राता रखा करें ताकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाएं और हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए। ओके, सो प्रोग्राम की लास्ट लिंक में हम आ चुके हैं। वक्त बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है, मुकाबला बढ़ा सकते तो जरा आपके मैसेजेस की जानब भी आ जाते हैं।

कसम न दे कसम न दे। अच्छा ये हमारे साथ जी मौजूद है मीरपुर खास अब्दुल्ला भाई, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें, क्या बात है, बढ़िया यूज करते रहिए। महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम जी। अली हमारे साथ है मोरो से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली। और हमारे साथ है गोट हाची गुलाम खास के लिए, लगझंडो मरी खां कुर्बान खास के लिए, अदा असा जबलन में शो बुधूं पया। वाह साईं वाह, जबलन में भी असांजा माण्हू शो बुधन पया। जियो करे जियो करे, डी स्किन क्रीम जबलन में भी अवेलेबल कराए सको था। जेके नंबर तांके बुधाया पई, बस वही डायल कजो, कॉल या फिर मैसेज कर अदे के चेजो, अदा असन जबलन में भी चाहूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले। जिन जबल वारा मानू भी लगन बबो, उन्हें डो कयो चा आई ता सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो, अवेलेबल करायो, सोना सोना थी वणो। अच्छा ये हमारे साथ है सज्जन माशी एंड शफीक साबकी गोठ जान मोहम्मद माशी मोरो का तवा सके ज्वाइन कयो है। सुबह जो मोबदू एंड प्रोग्राम बदू पया, अली रसा में सुन रहे हैं मोरो से, कहते कैसी हो सिद्रा कान, आपका शो नाइस है। थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी, आप बताएं कैसे हैं। और मोरो वाले लोगों का क्या कहना भाई, इतने एक साथ ही मैसेज कर दिए मोरो के लोगों ने। अब ये तो बताएं, मोरो में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि मोरो में मुझे लग रहा है कि मिल रही है, तो आप जरा जाइएगा और परचेज करके आइएगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ये गाना आतिफ असलम की आवाज में है, तो जिन्होंने बोला कि आतिफ का गाना सुनाएं उनको डेडिकेट जाता है।

0: की क्या बात है। और यहाँ पर वासु भाई में सुन रहे प्रोग्राम भल्ला हल्दा पयदी, थैंक यू वेरी मच भाजू मोबितुआ है। और यासीन कहती है आपका शो पूरी दुनिया में छा गया है, जय बुधा कसम दिया तो खबर है गुनू ऐसा पेरी लिंक वाला कॉमेंट तमु पेरी लिंक में ही खत्म करे चढ़िया हुआ। हाँ बी लिंक वारन में थोड़ी देर थी वही हूँ। अच्छा मुजाहिद मलिक हमारे साथ कहते हाय सिडो गोटकी में मिल रही है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, मैं यूज कर रहा हूँ, चमकाए छो ती मारे छे वाला अड़ा अड़ा फीडबैक दींदा कयो बुधाइंदा कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइंदा है खबर पे बाबा ये जगह सोना मानो घुमन पया ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइन पया ओके जी हिदायतुल्लाह कहते बिल्कुल सिदरा
1: तड़प रहा है जाने को
0: मत करें अच्छा फहीम भाई जो बाह लोड़ी घुमंदो है मुख्य खबर ना अला उनके छा चंदा है आई एम मासूम मणु नन्ना मुन राय देश का सिपाही हिदायतुल्लाह वो बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। दर्दे दिल कहती है नाइस शो पर माय मूड ऑफ व्हाई क्या हो गया आपको। और जी हमारे साथ हैं हजार भाई आपको प्रोग्राम पसंद आया बहुत शुक्रिया। और चाचा के बारे में फहीम कहते हैं कि सर दिन रात एसी में होते हैं फिर भी सर को गर्मी हो रही है कराची में, वही मैं सोच रही थी वड्डे लोग ते वड्डियां गल ये तो आपने सुना ही होगा तो बस वो सीना

ओवेसी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए। और यहाँ पर वफा शेजाद और मक्सी हमारे साथ है, कहते प्रोग्राम पसंद आए, थैंक यू डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधाई कर। और रशीद खोसो है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा फरवा कहती है हर दिल जो प्यार करेगा। अच्छा वफा मीर खान मुगेरी भाई हमारे साथ है, कहते हैं तोसा मिलण जो हसरतू अना भी अधूरियो आहिन, सोना साई उम्मीद आहे जिंदगी जे के मोड़ ते मिलंदासी। अदीम अली मुगेरी, उस्ताद मोहम्मद अयूब सोलंगी, वफा मीर खान मुगेरी फ्रॉम यार मोहम्मद कॉलोनी। कोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हलाए जो भामा कोशिश कयां थी, तां जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधू पया।

क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना। और साजिद कहते हैं कि सऊदी अरब खां मेरे चाचा कमरदीन भुट्टो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। चाचा के चऊं था पापा मोहब्बत हुआ चाचा तां सनो प्रोग्राम बुधो पया। उनका अलावा वासु भाई कहते हैं अदी सिडो थाने गुमना थींदम इंशाल्लाह 20 सितंबर खां बाद हर रोज तां जे प्रोग्राम में हाजिर थींदा। ओके भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐं असां चुप करे वेही रहियासीं पर चुप करे वेहण न घुर्जे, डीस टू ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करण घुर्जे। तव्हां छा समझो हुयो, उल्टो सुल्टो मशरो थोरी ॾींदमि तव्हांखे।

जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के दावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और इस्तेमाल अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मुझे बताइए ताकि हमें पता चले कि ये जो इतने खूबसूरत से लोग हैं वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं। अच्छा वफा मीर खान मुगेरी भा तव जो मोहबतू आई असा बिल्कुल ठीक ठाक आयो तव भाईरन जो दुआओं खपन हाँ फहीम भाई पता नहीं क्या इशू है शाम वाले प्रोग्राम के साथ वो पोस्ट उसकी जरा रुकती ही नहीं है थमती ही नहीं है। और जी अख्तियार अली सिंधी भाई हमें सुन रहे हैं मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं आपको वेलकम कहा जाता है। हजार भाई कहते हैं कि ओ कल जुम्मा है इसीलिए आप इतनी हैप्पी हैं अब समझा एग्जैक्टली

ओके जी, अखलाक भाई भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। नाइस यो, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। और हक खान मुल्तानी हमारे साथ हैं। भाई तुम्हारे डायस्टी का शो तमाम मोकलिया ना सांडे, थोड़ो रहम कयो बाबा, मानो जा कमेंट मते भजी वेंदा मानो। स्टिकर इतना न मोकली थव नहीं कौन था। अच्छा अली रज़ा लगारी भाई असा के बुधन पया। जी जी बिल्कुल, तांचो मोहब्बत वन ता प्रोग्राम बुधु पया। अच्छा वरी वफा अब्दुल वहीद जतोई भी अच्छी वयान जी स्टिकर खणी करे। हेडा सारा स्टिकर तमा खणी आया छो बाबा, खैर ताए बीसी खुली तव छा।

भाई करीब ही छापा सकूं। अच्छा गाना था, इंजॉय किया हमने। और ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ब्रेक होने वाला है, ये बस मेरी चॉइस पर गाना चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते रहिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आके खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला प्रोडक्ट है, तो ट्राई करके देखिए, मजे ना आए तो कहिएगा जरा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बता दिया करें, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ कुछ

जी बिल्कुल, दुख इस बात का है कि क्यों याद है। और जरा कुछ हमारे पास मौजूद है, हम जरा अर्ज करेंगे, आप सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि अगर मैं खुद से ही थक जाऊं तो कहां जाऊं, अगर मैं खुद से ही थक जाऊं तो कहां जाऊं, जब मेरा अपना वजूद ही मेरे लिए बोझ बन जाए तो बताओ जरा मैं कहां जाऊं। कभी दिल चाहता है सबसे दूर किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां मेरी खामोशी को भी कोई सुन ना पाए और कोई सवाल भी ना कर सके। मगर इंसान दुनिया से तो भाग सकता है, अपने अंदर के शोर से नहीं भाग सकता। मैंने बहुत लोगों में सुकून ढूंढा मगर हर बार खुद को पहले से ज्यादा तन्हा पाया। काश कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरी खामोशी पढ़ ले और मुझे कुछ कहे बगैर समझ ले। अब ना किसी से शिकवा करने को दिल चाहता है, ना अपनी कैफियत बयां करने को अल्फाज मिलते हैं। बस कभी कभी दिल चाहता है कि कोई पास बैठे और कहे, तुम्हें सब अकेला क्यों छोड़ जाते हैं और तुम्हें सब अकेला ही क्यों सहना पड़ जाता है। शायद थक जाने के बाद इंसान को रास्ता नहीं सिर्फ एक मुखलिस कांधा चाहिए होता है, और अगर वो भी ना मिले तो इंसान खामोशी से अपने ही अंदर कहीं गुम होता चला जाता है, किसी ऐसे रास्ते पर जहां शायद उसे कोई ना ढूंढ पाए और शायद वो कभी खुद को भी ना ढूंढ पाए।

बाकी जुड़े सी के साथ यहाँ पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत वरी तमाम से मुलाकात मुझे थे पई पंच बजे वाली प्रोग्राम में उधर नवी सारींदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण भी नवी सारींदा ठीक है तो पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रखना किथे का गलती थी हुजे त माजरत कयूं था कि जो फीडबैक रहिजी वयो आहे वो गानोड़ो शानोड़ो रहिजी वयो त बाबा माजरत कयूं था मोकलानी ना ही सलामत सलामत अल हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल।

0: पंजवीह एकड़नि जी एराज़ीअ ताईं कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार। फोका खुराक खाते खे कणक फराहम कंदड़ हारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलंदी। सिंताबिन आबादगारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। खुराक खाते खे कणक फराहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई आहे। वॾे वज़ीर जी सारत हेठि काबीना जे इजलास में पंजवीह एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त कणक जे आबादगारनि जी नई रजिस्ट्रेशन जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़रिए कई वेंदी। DAP भाण पां या मंज़ूर थियल मुतबादल भाण ख़रीद कंदड़ अहल हारियुनि खे हिक जहिड़ी सब्सिडी ॾिनी वञे। इजलास खे ब्रीफिंग ॾिनी वई। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़चीअ फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर विच में फोन ते राबितो खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिबि अब्बास इराक़चीअ तुर्किया जे परदेही वज़ीर सां बि राबितो कयो। अब्बास इराक़चीअ चयो आहे त ईरान अवाम जे हक़नि ऐं मुफ़ादनि जी ज़मानत ॾींदड़ सफ़ारती हर जी आजियां करे थो। चीन नथो चाहे त इलाक़ाई छिकताण यमन रेड सी लाइन ताईं पहुचे। सभई धुरियूं सूरतहाल खे वधीक मुंझाइण खां पासो कनि ऐं मसला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कनि। चीनी परडेही जी बीजिंग में ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़चीअ सां मुलाक़ात। वांगची चयो आहे त चीन आलमी छिकताण ख़त्म करण में तामीरी किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। सभई धुरियूं आपने अरमुज खोलण लाइ कदम खणनि। ईरान ऐं अमेरिका जल्द सां जल्द इस्लामाबाद मुफ़ामती जादाज़ तरफ़ अचनि। पाकिस्तान पारां मके जे तहफ़ लाइ सऊदी अरब जो साथ ॾियण जो अज़म। परडेही तर्जुमान सजाद हैदर प्रेस ब्रीफिंग में चयो त मके खे निशानो बणाइण शर्मनाक अमल आहे। अहिड़े अमल सां सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि जे जज़्बनि खे चियो रचियो आहे। हुसैन खे सऊदी अरब ख़िलाफ़ हमला रोकणा पवंदा। भारत 15 सेप्टेम्बर ते समुंड में पाकिस्तानी इक़्तिसादी ज़ोन में जारानी हरकत कई हुई। भारतीय कदम खिते जे अमुन लाइ ख़तरो बणिजी विया आहिनि। सिख यात्रियुनि खे भारत वञण खां रोकण वारियूं ख़बरूं ग़लति आहिनि। पाकिस्तान सिर्फ़ वैसाखीअ लाइ 2800 खां वधीक वीज़ा जारी कया। करतारपुर राहदारी बे भारत बंदि करे छॾी आहे। पाकिस्तान सिख यात्रियुनि जी आजियां करण लाइ तयार आहे। अमरीकी सदर ईरान जंग जल्द ख़त्म करण जी उमीद ज़ाहिर करे छॾी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण आहे त ईरान जंग ख़िलाफ़ पुॼाणीअ ते आहे। रॉयटर्स मूजिब ट्रंप जे बयान जी उबतड़ जंग वधीक पखिड़जण जो ख़दशो वधी वियो आहे। अमरीकी मीडिया दावा कई आहे त अंगारे ते गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में ट्रंप जे नार वारनि मुल्कनि जे अॻवाननि सां मुलाक़ात जो इम्कान आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मजूरी।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
0: जी हा 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
3: जी हाँ, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: चीन नथो चाहे तो इलाकई छिटा हाँ यमन रेड सी ताई पहुंचे सभी धुरियों सूरताल के मुझाण का पासो कन मसला गालन जरिए हल कन चीनी परदे वजीर जी बेजिंग में ईरानी परदे वजीर अब्बास राक्चे से मुलाकात वांग ची है तो चीन आलमी छिकताण खत्म करण में तामीरी किरदार अदा करण तैयार है सभी धुरियों अबनार मुस्कोरण कदम खड़न ईरान ए अमेरिका जल्द का जल्द इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे तरफ अचन पाकिस्तान पारा मके के तहफुज ला सऊदी अरब जो साथ डेण जो अजम परदे तर्जमान सजाद हैदर प्रेस ब्रीफिंग में चयो तो मके के निशानो बणाए शर्मनाक अमल है अड़े अमल से सजी दुनिया के मुसलमान के जज्बन के चियो रस्यो है हुसैन के सऊदी अरब खिलाफ हमला रोकना पवंदा भारत 15 सितंबर ते समुंड में पाकिस्तानी इक्तसादी जोन में जारानी हरकत कई हुई भारतीय कदम खिते के अमुन ला खतरो बणजी विया सिख यात्रियों के भारत वंजन का रोकण वाली खबरू गलत आन पाकिस्तान सिर्फ एक साखी लाए 2800 का वीजा जारी कया करतारपुर राहदारी भी भारत बंद कर छी है पाकिस्तान सिख यात्रियों की आजिया करण लाय तैयार है मीर रजा केस की जांच लाए कायम अदालती कमीशन आडो संदस वेझो दोस्त अहमद बयान दौरान मीर रजा जो वालिद रोई पयो कमीशन पारा मीर रजा के वारसन से अकेलाई में मुलाकात की तजवीज वकीलन के मुलाकात में शामिल थियण का रोके छो अहमद के वकील मीडिया से गालाईन्दे है तो मीर रजा अहमद पान में घाटा दोस्त हुआ मीर रजा के वालिद अहमद लाए हो तो उन मीर रजा है अहमद अज सुभा मीर रजा के खानदान से मुलाकात कन्द अदालती कमीशन जा क्राइम सीन महफूज न होजन ते सवाल नर्सरी के अमले का कैल पुछा गाछा नाकाफी करार सिक्योरिटी गार्ड के हथियार बाबत भी पुछा गाछा सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिये मौजूद फोर्स के जिले आवरान में कार्रवाई दौरान टे दहशतगर्द जहनम भेड़ा कया वह ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दन के कब्जे में वे अंग में हथियार रद्द क्या वह कराची के सरजानी टाउन में औरत संदस टिन बार कत्ल संदन वेझो अजीज निकतो पुलिस खेस गिरफ्तार करे वरतो डीआईजी ओला इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्दे गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद हुमायूं नारी मेवे सा ज्यादे की कोशिश कई मजामत करण ते खेस कतल कयो 18 महीने की बारी रुनी ते खेस भित से टकरू हणी कतल कयो ब बार ट्यूशन तां मोटिया तो उन्हें भी कतल करण बाद जवाबदार घर के साफ कयो सरियो भी धोतो जै बाद फरार थो चौकीदार जे घर वारी जवाबदार हुमायूं के मेविश के घर वींदे डिठो हो जवाबदार बीहर सागे इलाके में आयो हो संदस सुणप थी जवाबदार वाके के फुरजो रंग डेण की भी कोशिश कई जवाबदार मकतूल औरत के मुड़स जो भेणवियो है केस में दहशतगर्दी जो कलम लगाने जो फैसलो कयो है सूबाई गुरु वजीर पारा जवाबदार की गिरफ्तारी ते पुलिस के शाबाश

0: कराची में रोलू कुतन के लाड़ के वाकन में डीहों डी वाद नव महीन दौरान मुख्तलिफ अस्पताल में 45,000 का केसिस रिपोर्ट अंग अखर मूजिब इंडस अस्पताल में जनवरी का हेल ती 14,000 का मरीज इलाज लाय आया। 23 जणन जूं हयातियूं ज़ाया थियूं आहिनि, जिनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 10,000 खां वधीक केस रिपोर्ट थिया आहिनि। 9 जणनि दम ॾिनो आहे। डॉक्टर रूथ के M5 सिविल अस्पताल कराची में जनवरी खां सेप्टेम्बर ताईं कुतनि जे ॾाड़नि जा 20,936 केस रिपोर्ट थिया आहिनि। सिहत जे माहिरनि जो चवणु आहे त कुते जे ॾाड़ण खां पोइ मुतासिर शख़्स खे बिना देर अस्पताल पहुचाइण ऐं रेब्स खां बचाइण लाइ वैक्सीन कराइण ताईं अहम आहे।
1: जवाबदार हाज़िर कोन ना ही वरी बदी आने वो असर वरी दम थियो परेशानियों फोनू पैसा।

0: हिते हर को पुलिस वारो चए थो त पुलिस छा कंदी, असांखे धमकाइनि पिया, असांखे पैसा वापसि ॾियनि, असांखे धमकियूं वारी साईं।
1: सकरन में निंगरी सां ॾाढाई कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तारीअ बाद छॾे ॾियण ख़िलाफ़ वारसन जो गुज़िरियल ॾींहं खां थाणे आॾो एहतियात जारी। निंगरीअ जे अमण जो चवणु आहे त पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करण बाद छॾे ॾिनो आहे। जवाबदार बासर हुजण सबब खां मोश रहण लाइ धमकाए रहिया आहिनि, इंसाफ़ न मिलियो त पाण खे बाहि ॾेई छॾींदासीं।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। अली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32।
3: अपना शहर अपना घर, आवाज GAFM
9: 90.4। तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।

0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
0: जी हा, 3135525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटू लगण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

सुखिया डुबरा पाण में भाकुर विजू भरे ही कायम रहे कयामत तई मोहबत कड न मरे पंजल थियो न परे जैसी जेरा आयो जान में।

सदा शहर सिंध जे निज़ारनि ते लिखबो, मेहरान जे मौजुनि किनारनि ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारनि ते लिखबो, हारनि मज़दूरनि मोचारनि ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारनि ते लिखबो, मुंहनि जे दड़े जे आसारनि ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारनि ते लिखबो, ओ दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो, दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध में 25 एकड़नि जी एराज़ी ताईं कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार। खुराक खाते खे कणक फराहम कंदड़ हारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलंदी। ज़रात वारे वज़ीर जी अॻुवाणीअ में आबादगारनि लाइ कमेटी बि क़ाइम। सिंध काबीना आबादगारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कणक फराहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फ़ी मण कई वई। वरी वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास में 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी। काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स ॿीहर उगाइण जो बि फ़ैसिलो। सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरितो। कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज़्यादतीअ जो बि इल्ज़ाम। सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग ॾींदे ख़ुराक वारे वज़ीर मख़दूम महबूब चव्हान चयो त असां कणक जी ख़रीदारी आहियूं, पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज़्यादती करे रहियो आहे। सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बार्डर बंदि रखियो। असां 2500 रुपियनि जी सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं। हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं। मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे। हिन भेरे बि असांखे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। वधीक 2.5 लख आपातकारनि खे रजिस्टर्ड कंदासीं ऐं आपातकारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं। जाम खान शोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूद न हुजे हा त सिंध में अटे जो वॾो बोहरान पैदा थिए हा।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ॾाढो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो जीए FM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
4: जी हां 2315525786
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज़, सिंध की
3: आवाज़। दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू हैं।
4: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दया उन्नीवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई زکه هم دغه ساس کی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
5: केश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: रिलीफ पैकेज ते हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में गॾजाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया। डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदर अकाउंट्स में रक़म मुंतक़िल करण ते तफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणण जी ख़ातिरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण आहे त हुकूमत अदायगियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे। सिंध में 25 एकड़नि जी एराज़ी ताईं कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार। ख़ुराक खाते खे कणक फराहम कंदड़ हारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलंदी। ज़राअत वारे वज़ीर जी अॻुवाणी में आबादगारनि लाइ कमेटी बि क़ाइम। सिंध काबीना आबादगारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कणक फराहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी। काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स ॿीहर उगाइण जो बि फ़ैसिलो। सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरितो। कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज़्यादती जो बि इल्ज़ाम। सिंध काबीना जे इजलास में ब्रीफिंग बाद ॾींदे ख़ुराक वारे वज़ीर मख़्तूम महबूब ज़मान चयो आहे त असां कणक जी ख़रीदारी में नाकाम थिया आहियूं। पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज़्यादती करे रहियो आहे। सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो ऑर्डर बंदि रखियो। असां 2500 रुपियनि जे सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं। हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं। मोहम्मद बख़्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे। हिन भेरे बि असांखे ॾुखियनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। वधीक 2.5 लख आबादगारनि खे रजिस्टर कंदासीं ऐं आबादगारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं। जाम ख़ान शोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूद न हुजे हा त सिंध में अटे जो वॾो बोहरान पैदा थिए हा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी जो टेलीफोनिक राब्तो। ख़ते जी सूरतहाल, इलाक़ाई अखबराई ऐं घरियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। ईरानी ख़बर एजेंसी मूजिबि अब्बास राक्षी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो। अब्बास राक्षी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क हमन सब सां बि फोन ते राब्तो। अब्बास राक्षी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अखबारनि सां कामयाब मुशावरत थी। सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबति बयान अहम हैसियत रखे थो। पाकिस्तान मक्का मुआदे जो पाबंद आहे ऐं सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। वॾे तर्जुमान पारां सऊदी अरब में हूसी हमलनि जी मज़म्मत। हमला नाकाम बणाइण ते सऊदी जी हथियार बंद फ़ौज जी सारा। वॾे तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान हूसी हमलनि खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल खे ॾिसी रहियो आहे। बाबुल मंदिब जी सूरतहाल ते बि ॻणती आहे। वॾे तर्जुमान ओमान जी साहिली पट्टी ते हिकु जहाज़ मथां हमले दौरान हिकु पाकिस्तानी जे गुम थियण जी तस्दीक बि करे छॾी। जहाज़ ते तनक़ीद थी रही आहे। इहो जहाज़ मुंहिंजो ज़ाती न पर वज़ीर अला पंजाब जो आहे। चइनि वॾनि वज़ीरनि वटि जहाज़ आहिनि। तनक़ीद रुगो मुंहुं मथां थिए पई। धीअ जी ग्रेजुएशन तकरीब में वञण ते बि तनक़ीद थी। सभिनी खे ॿुधाइण चाहियां थी त जहाज़ ते जेको 2.25 करोड़ रुपया ख़र्च आयो इहो पंहिंजे खीसे मां भरियो। मरियम नवाज़ जो मुल्तान में तकरीब में ख़िताब। मरियम नवाज़ जो चवण आहे त के बि मां कुझु माण्हू पंजाब ते हमिलो करण आया। पंजाब जी अवाम इन्हनि खे रद्द कयो त पाण मुरादो हवा जो जामो रचायो वियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु
2: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
4: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: मातली आस पास की अवाम खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
10: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03132525786।
6: जी हा, 2315525786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मातली आस पास की अवाम खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नजद अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
2: कैश किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितू पक्यू हुजन त कैश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
2: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा
6: 03132525786
2: जी हाँ 2315-25-786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू हैं।
4: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयाउन्नवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल महेरवई जका चुहम दगसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यादवी और द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
5: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: शादी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छो शादी तकरीबन में रुगो एक डिश पेश करण जो फैसलो फार्मेसीज लेबोरेटरीज क्लिनिक्स अस्पताल तंदूर ए पेट्रोल पंप्स पाबंदी का आजा टेक अवे होम डिलीवरी सर्विसेज के भी बंदिश का छूट 10 महीन लाए पढ़े सरकारी दौरन ए सफर से मुकम्मल पाबंदी लागू जरूरत पवण से वजीर सलाहकार सरकारी ऑफिसर इकोनॉमी क्लास में सफर कंदा सरकारी आजियाणन ते भी पाबंदी हुकूमत के खर्च ते को प्रोग्राम न थींदो 50% सरकारी गाड़ियों ग्राउंड थींदियूं सरकारी गाड़ियों लाए तेल की फ्राहमी में भी घटताई फ्यूल रिलीफ पैकेज से हुकूमत ए पेट्रोलियम डीलर्स विच में गालियों कामयाब इस्लामाबाद में कटाणी दौरान बिन्हीं धुरियन विच में मामला तय थी व्या डीलर्स के स्टेट बैंक जरिए 48 कलाकन अंदर अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करण ते इतफाक पेट्रोलियम वाले वजीर पारा आईंदा स्टेक होल्डर्स सा मुशावरत जो अमल वधीक बेहतर बनाने की खातरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण है त हुकूमत अदायगियों के तरीकेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी फ्यूल रिलीफ पैकेज से अमल शुरू कयो वियो आहे सिंध में 25 एकड़न की एराजी ताई कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाए अहल करार खुराक खाते के कणक फराहम कंदड़ हारियन के वादू सब्सिडी मिलंदी ज़रात वारे वजीर की अगुवाणी में आबादगारन लाए कमेटी भी कायम सिंध काबीन आबादगारन लाए कणक ते सब्सिडी पैकेज की मंजूरी रही छी कणक फराहम कंदड़ हारियन लाए सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रूपया फी मण कई वही वारे वजीर की सदारत हेठ काबीन के इजलास में 25 एकड़न ताई जमीन रखंदड़ हारियन की नई रजिस्ट्रेशन खोलने जो फैसलो सूबे में मिल्कियतन के डिजिटलाइज करण स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी काबीना पारा एडवांस कलेक्शन टैक्स बीह उगाण जो भी फैसलो सिंध हुकूमत कणक खरीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरतो कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज्यादतीअ जो भी इल्ज़ाम सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग डींदे खुराक वारे वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान चयो त असां कणक जी ख़रीदारी में नाकाम थिया आहियूं पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज्यादती करे रहियो आहे सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बार्डर बंदि रखियो असां 2500 रूपियनि जी सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे हिन भेरे बि असांखे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो वधीक 2.5 लख आबादगारनि खे रजिस्टर्ड कंदासीं ऐं आबादगार जाम खान शोरू चयो जेकॾहिं गोदाम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकी जो टेलीफोनिक राब्तो ख़ते जी सूरतहाल इलाक़ाई अखबराई ऐं गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल ईरानी ख़बरू एजेंसी मूजिब अब्बास इराकी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो अब्बास इराकी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क हमसब सां बि फोन ते राब्तो अब्बास इराकी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अॻवाननि सां कामयाब मुशावरत थी सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबत बयान अहम हैसियत रखे तो पाकिस्तान मक्का मुआहदे जो पाबंद आहे ऐं सऊदी अरब सां कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे वॾे तर्जुमान पारां सऊदी अरब में हूसी हमलनि जी मुज़म्मत हमला नाकाम वञण ते सऊदी जी हथियारबंद फ़ौज जी सारा वॾे तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान हूसी हमलनि खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल खे ॾिसी रहियो आहे बाबुल मंतिब जी सूरतहाल ते बि गणती आहे वॾे तर्जुमान ओमान जी साहिली पट्टी ते हिकु जहाज़ मथां हमले दौरान हिकु पाकिस्तानी जे गुम थियण जी तस्दीक बि करे छॾी जहाज ते तनक़ीद थी रही आहे इहो जहाज़ मुंहिंजो ज़ाती न पर वज़ीर आला पंजाब जो आहे चइनी वॾनि वज़ीरनि वटि जहाज़ आहिनि तनक़ीद रुगो मूं वटां थिए पई धीअ जी ग्रेजुएशन तकरीब में वञण ते बि तनक़ीद थी। सभिनी खे ॿुधाइण चाहियां थी त जहाज ते जेको 2.25 करोड़ रुपया ख़र्च आयो उहो पंहिंजे खीसे मां भरियो। मरियम नवाज़ जो मुल्तान में तकरीब जो ख़िताब। मरियम नवाज़ जो चवणु आहे त केपी मां कुझु माण्हू पंजाब ते हमिलो करण आया। पंजाब जी अवाम हिननि खे रद कयो त पाण मुरादो अख़वा जो ड्रामो रचायो वियो।

0: पीपी सिंह के सदर निसार कोड़े है सिंध असेंबली केतरा ही भेरा ठहराव पास कर चुकी है त सिंध के नव सूबो न खपे सूबा ठाणा त पंजाब ए केपी में ठाओ एक वफाकी वजीर सूबे के मामले से हथियार खण जो चई रो है यो अमल खाना जंगी बराबर है अड़ी गाल वजीर आजम नोटिस छो न तो वे निसार कोड़े जो लाड़काने पार्क खिताब निसार कोड़ो चयो था एक वफाकी वजीर सूबन के मामले से फौज के मुलविस
1: एहसास पूरा

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
5: मातली आसपास जी अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03132525786।
6: जी हा, 03135-25-786।
9: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।
11: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठन कुल्हन जिस्म के हर किस्म के सूर में आराम लाइ तैयार किया वो है। खात्मा दर्द कोरस मिलने जो हंध हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे का शाम जो 5 वगे ताई हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते के लिए फोन करो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। खात्मा दर्द कोरस सूर का छुटकारो सुकून भरी जिंदगी।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी, उहा बेडी घुराए पूरी करे दींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: क्या वहाँ पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
8: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
8: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: कलमा पढ़ो ते एक भेरा बेघर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों काफर थीवन ए केड़ी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के पंहिंजा यार दोस्त रोकिन था त तूं पंहिंजे महबूब सां मिलण न वञ तुंहिंजा दुश्मन तोखे हुते तुंहिंजा वेरी मारे विझंदा अर्ज़ु करे पियो मां मौत खां नथो डिॼां बहरहाल महबूब जो दीदार ज़रूरु करणो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लगराइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लगरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-32-41-230।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी तो यो किए छो ऐ छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड बीमार छो यो किसो ताके आ सही करे तो बुझाया आश्क वेचारो जड बीमार छो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

वज़ीराज़म हुकूमत जी बचत स्कीम जी मंजूरी ॾेई छॾी। इजलास दौरान माली साल 2026-27 जी बजट में नान ARE में 500 करोड़ कटौती जो फैसलो। शहबाज शरीफ चयो आहे त घटि आमदनी ऐं माशी तौर कमज़ोर तबके लाइ फ्यूल सब्सिडी शुरू थी वई आहे। मोटर साइकिल, रिक्शा ऐं 800 CC ताईं जी गाॾियुनि लाइ फ्यूल सब्सिडी ॾिनी पई वञे। आलमी मंडी में तेल जे अघनि में वाध सबब समूरी दुनिया महांगाई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। बचत स्कीम ते बिना फ़र्क़ जे अमल दरामद कयो वञे।

0: दुकान मार्केट ऐं शॉपिंग मॉल्स राति 9 वॻे बंदि थींदा। शादी हॉल्स ऐं ॿियूं कमर्शियल सरगर्मियूं राति 10 वॻे ताईं हूंदियूं। होटल, रेस्टोरेंट ऐं कैफेस राति 11 वॻे बंदि कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायत शारी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तकरीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेसी, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, इस्पताल, तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदी खां आज़ाद। टेक अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विसिस खे बि बंदिश खां छूट। 3 महीननि लाइ परडे॒ही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंदी लागू। ज़रूरत पवण ते वज़ीर, सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा। सरकारी आजियाणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी में बि घटिताई। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में गॾिजाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया। डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदर अकाउंट्स में रक़म मुंतक़िल करण ते इतफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर्स सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणाइण जी ख़ातिरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवणु आहे त हुकूमत इदाइकियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे।
1: नंबर जो हमने लिखा है पर एकड़ वो 4,000 रखा है। वो पर एकड़ के हिसाब से हम 3 कैटेगरी इसमें डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी जिन्होंने हमें वीट की है, एक कैटेगरी वो है जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है 3.5 लाख। थर्ड कैटेगरी ये होगी कि हम और रजिस्ट्रेशन जो है और फार्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अराउंड 2.5 लाख और फार्मर्स को हम रजिस्टर भी करेंगे।
2: जो प्रॉपर्टीज है सिंध में उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं और उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं। एक और बड़ा मेडिकल टावर बनाने जा रहे हैं, 30 और 30 मेडिकल टावर, 13 मंजिला ही होगा, 455 बिस्तर होंगे। इसमें नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम की जो पीढ़ी है उनके जो मुद्दे पर मिलाने पर कोशिश की गई है। एसआईओटी के लिए 575 मिलियन से ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मदद को एग्जिट किया गया है। ताकि हमें पोस्ट की कलेक्शन है उसको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का शुरू है, उसमें जो भर्तियां होती हैं और कमीशन होते हैं उनके तरीके काम को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। स्पोर्ट्स पॉलिसी की काफी मैंने आगे थोड़ी भी दे दी।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GAFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।
7: धर माशूम वर कोटि कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई। अखबल माशुमानुता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई। जकच हम द सास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजर मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैंस वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली आसपास की आवाम खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असा वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
2: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी, खुद पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, اخپل ماشومان تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهر وی، زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं कदम।
4: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दुकान मार्केट्स ऐं शॉपिंग मॉल्स रात 9 वॻे बंदि थींदा। शादी हॉल्स ऐं ॿियूं कमर्शियल सरगर्मियूं रात 10 वॻे ताईं हूंदियूं। होटल रेस्टोरेंट्स ऐं कैफेज रात 11 वॻे बंदि कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायतशारी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तकरीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेसीज, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, इस्पताल, तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदी खां आज़ाद। टेक अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विसिस खे बि बंदिश खां छूट। 3 महीननि लाइ वॾे सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंदी लागू। ज़रूरत पवण ते वज़ीर, सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा। सरकारी आजियणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी में बि घटिताई। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत जी बचत स्कीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। इजलास दौरान माली साल 2026-27 जी बजट में नान ARE में 5% कटौती जो फ़ैसिलो। शहबाज शरीफ चयो आहे त घटि आमदनी ऐं माशी तौर कमज़ोर तबिके लाइ फ्यूल सब्सिडी शुरू थी वई आहे। मोटर साइकिल, रिक्शा ऐं 800 CC ताईं जी गाॾियुनि लाइ फ्यूल सब्सिडी ॾिनी पई वञे। आलमी मंडी में तेल जे अघनि में वाध सबब समूरी दुनिया महांगाई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। बचत स्कीम ते बिना फ़र्क़ जे अमल दरामद कयो वञे। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स में विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में गॾिजाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया ऐं रक़म मुंतकिल करण ते इतफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणाइण जी ख़ातिरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण आहे त हुकूमत अदायगियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे।
1: नंबर जो हमने रखा है पर एकड़ 4000 रखा है। पर एकड़ के हिसाब से हम तीन कैटेगरी इसमें डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी जिन्होंने हमें वीट की है, एक कैटेगरी वो है जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है 3.5 लाख। थर्ड कैटेगरी ये होगी कि हम और रजिस्ट्रेशन जो है और फार्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अराउंड 2.5 लाख और फार्मर्स को हम रजिस्टर भी करेंगे।
2: जो प्रॉपर्टीज है

0: डिजिटलाइज कर रहे हैं और उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफर का जो है एक और बड़ा मेडिकल टावर बनाने जा रहे हैं। 30 और 30 हजार इनकी मेडिकल टावर 13 मंजिला भी होगा, 455 बिस्तर होंगे इसमें। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम की जो पीढ़ी है उनके जो मुद्दे पर मिलाने में कोशिश की गई है। SIOT के लिए 575 मिलियन से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मदद को एग्जिट किया गया है। काजमाने मोस्ट कलेक्शन है उसको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का शुरू है उसमें जो भर्तियां होती हैं और कमीशन होते हैं उनके तरीके काम को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। स्पोर्ट्स पॉलिसी की काजमाने आगे थोड़ी भी देगी।
1: सिंध में 25 एकड़नि जी एरासी ताईं कणक पोखींदड़ आपातकार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार। खुराक खाते खे कणक फराहम कंदड़ हारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलंदी। ज़राअत वारे वज़ीर जी अॻुवाणी में आबादकारनि लाइ कमेटी बि क़ाइम। सिंध काबीना आबादकारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कणक फराहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रूपिया फी मण कई वई। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास में 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज़ करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी। काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स ॿीहर उगाड़ण जो बि फ़ैसिलो। सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरितो। कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज़्यादती जो बि इल्ज़ाम। सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग ॾींदे ख़ुराक वारे वज़ीर मख़्तूम महबूब ज़मान चयो आहे त असां कणक जी ख़रीदारी में नाकाम थिया आहियूं। पंजाब 3 सूबनि सां ज़्यादती करे रहियो आहे। सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बॉर्डर बंदि रखियो। असां 2500 रूपियनि जे सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं। हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं। मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे। हिन भेरे बि असांखे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। वधीक 2.5 लख आबादगारनि खे रजिस्टर्ड कंदासीं ऐं आबादगारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं। जाम ख़ान शोरो चयो त 2025 में जेकर गोदामनि में कणक मौजूद न हुजे हा त मुल्क में अटे जो वॾो बोहरान पैदा थिए हा। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां ईरान जे परडे वज़ीर अब्बास राख़्शी जो टेलीफोनिक राब्तो। हिते जी सूरतहाल, इलाक़ाई अखबराई ऐं गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। ईरानी ख़बर एजेंसी मूजिबि अब्बास राख़्शी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो। अब्बास राख़्शी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क मनसब सां बि फोन ते राब्तो। अब्बास राख़्शी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अॻुवाणनि सां कामयाब मुशावरत थी। सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबति बयान अहम हैसियत रखे थो।

0: Pakistan makam vardı.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: मातली आसपास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-3141-230।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM
8: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन पड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
5: जी हाँ 03135525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करणी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करणी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरियल दिलन में आ बेआई, चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करणी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करणी आ।

कराची का कश्मोर कींझर का कारूंझर ताई सुहणी सिंध वासिन के आब चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सा गदाऊं आया आब चौहान आए अवा बुधी रहा हो जीए एफएम नेटवर्क।

प्रोग्राम दिल जी गाल ऐं जी एफ एम नेटवर्क जे बुधंदड़न सबनी मानायतन महबूबन प्रीम प्यारन दिलरुबा दोस्तन के वेलकम भलीकार खुशामदी।

सितारा जगमगाईंदा कती आकाश डे कहंदी। सितारा जगमगाईंदा कती आकाश डे कहंदी, पहिरीं तूं मां न हूंदासि। नदीअ ते ॿूर पियो किरंदो, पखी सुरमा पियो ॿोलींदो, लय जे लाम पई लुॾंदी, लई जी लाम पई लुॾंदी, पहिरीं तूं मां न हूंदासि। जॾहिं सावण अची लहंदो, नवां खे साज़ छेड़ींदो, जॾहिं सावण अची लहंदो, नवां खे साज़ छेड़ींदो, पलर पलोट सी हूंदी, पहिरीं तूं मां न हूंदासि।

दोस्तों प्रोग्राम में शामिल कंदासे मास्टर मंजूर जी प्रोग्राम में

दोस्तों वक्त थियो आहे हिकड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वापसि वरंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: छा तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
8: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो
8: हले तो बिना ब्रेक
6: ठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 0331252578 6
6: जी हा 3135525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

अञे ई कान थी ही दिल ॾिसे थी ख़्वाब शीशनि जा, इन ई आवारगी पोयां असांजा नेण पत्थर थिया। शहर में शोर हो जेको असां वियासीं ॿुॾी तह में, शहर में शोर हो जेको असां वियासीं ॿुॾी तह में, असां हाणे न लभंदासीं असांजी पिया कयो ॻोल्हा। हुयो माण्हू अलाए कहिड़ो, रुलियासीं उम्र भर जंहिं लाइ। हुयो माण्हू अलाए कहिड़ो, रुलियासीं उम्र भर जंहिं लाइ, असांजी निंड लोढ़े वियो, ॾेई वियो जाग जा सपना। असांजी आशिकीअ खे तूं ॾींहं तमसील थो कहिड़ी, असांजी आशिकी खे तूं ॾींहं तमसील थो कहिड़ी, ॾिसल पियो उस भासे थो, जुदाई छांव जहिड़ी आहे।

0: अनवर अली मंगी आचर घिटी खां वेलकम भलीकार प्यारा प्रोग्राम में कड़ा हलन खुश आयो
1: दुआ सर तवा खुश आयो जो खैर
0: हल A1 अल्लाह जा एहसान
1: दुआ दुआ तां तां जो प्रोग्राम बुधला और
0: जी
1: इंतजार कंदा आयो
0: वडी मेहरबानी मोहब्बत हूं अवां जो मान
1: जो सब खैर आ सर खुश आयो न
0: अल्लाह जा एहसान प्रोग्राम बुधो पिया
1: शेर अर्ज कंदा सी
0: इरशाद इरशाद
1: दिल जी गाल त तां के बुधाणी पोंदी आ सई
0: जी क्या बिस्मिल्लाह
1: अर्ज क्या सर दिल तो चाहता है मैं पंछी बनूं पर तो है लेके लोड़ा जाता नहीं
0: हाँ।
1: यार की कोई खबर लाता नहीं
0: हाँ।
1: सब लबों पर है मगर जाता नहीं
0: वाह वाह
1: जी तो चाहता है कि जोगी बनूं दर बदर मुझसे फिरा जाता नहीं यार की कोई खबर लाता नहीं सब लबों पर है जाता नहीं जी तो चाहता है कि सजदे करूं बे नमाजी हूँ झुका जाता नहीं यार की कोई खबर लेता नहीं दम लबों पर है मगर जाता नहीं
0: क्या बात है
1: या इलाही कौन सी मंजिल है वो जो उधर जाता है इधर आता नहीं यार की कोई खबर लाता नहीं
0: लाजवाब
1: नालान सर
0: शामिल क्यों
1: भुटा रोड का साई नादर हुसैन शाह गाबिर हुसैन शाह आचर गिटी सकर का रियाज चौहान अमीर कुरेशी अहमद अली मंगी मनोहर अली मंगी मोहम्मद अली मंगी सर अर्ज आया साईं कलाम अगे भी चयोसीं तव्हां न ॿुधायो
0: जी
1: सभु दिला सां जॾहिं दिलि भर तव्हां मिलाए कोई नथो
0: लॻी
1: जो गानो
0: आहे
1: महिरबानी करे ॿुधाईंदा
0: लाज़मी प्यारा प्रोग्राम ॿुधंदा रहो वॾी
1: महिरबानी सर ओके ख़ुदा
0: बिल्कुल अवां जूं कॉल्स वठबियूं बिना कंहिं ताख़ीर जे अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां सोडो खान ज़रदारी मोरो खां वेलकम भलीकार
1: बहिरा
0: ए वन अलाह जा एहसान अवां ॿुधायो कीअं आहियो काश ईअं इंजॉय मां बि करे सघां ईअं प्रोग्राम ॿुधी करे कंहिं आरजे जो दोस्त जो अवां सां गॾु थधड़ी हवाउनि में वेहा पर ठीकु अवां लाइ असां वेठा आहियूं हिते अवां थधड़ी हवा इंजॉय कयो छा चवण चाहींदो का दिलि जी ॻाल्हि
1: प्रोग्राम ॿुधी ॾाढो ख़ुशी थींदी आहे ऐं ख़र्च लही पवंदो
0: आहे सर सर वॾी महिरबानी मोहबतूं नथी अॼु पहिरीं काल खां वठी इहे ई मयारूं हलंदियूं अलाह ॿुधायो साईं अॼु फरमाइश कयो शामिल कयूं था लॻी थो प्यार जे क़ाबिल बिल्कुलु अॼु लाज़मी हलंदो दोस्तनि जा नाम शामिल कयो
1: वॾी
0: महिरबानी प्यारा कुर्ब सलामत हुजो सलामत हुजो मोहबतूं कुर्ब इहे अवां जूं मयारूं मोहबत में वणंदियूं बि आहिनि किथे बि कम्पलीट थींदियूं आहिनि फरमाइशूं किथे रहिजी बि वेंदियूं आहिनि इन्हनि लाइ माज़रत घुरंदासीं कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां अलाह जा एहसान दुआऊं अवां ॿुधायो क्या बात आहे जे ॿिए दरवाजा आहिनि त कढी कांगन खे ॾियां क्या बात आहे साईं क्या बात लाजवाब छा चवणु चाहींदो
1: असांखे साईं सुलेमान शाह ॿुधाइजो
0: सुलेमान शाह बि शामिल कंदासीं प्रोग्राम में
1: साईं के असां दोस्तन बहरन के जेसाईं आवाज़ वञे थो सभिनी खे सलाम आहे तव्हांखे स्पेशल सलाम
0: लख लख मोहबतूं महिरबानी वालेकुम सलाम प्यारा
1: महिरबानी।

ਤੂੰ ਮੰਜ ਦਿਆਰੀ ਆਣਿਆ ਫੁੱਲੀ ਹੀਰਨ ਵਾਰੀ